0: कैसे घर नो
1: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल संपर्क 9803-64460
2: पीतो सांदी

0: मीठा ऐसे घर वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल संपर्क 9803364060।
1: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803-64460।
1: मैं खडेरी धूर बनकर भुर्र उठू तब तू मोरलाक पानी बनकर बैठ। एक घची के मिलन के बाद वो एक ग्राम के प्रकाश तुहिन बाप बना कर उड़ा कर फिर से मैं इनसे दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे कर कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज।

0: योगदान दिऊ।
1: कञ्चन गाउँपालिका कञ्चन भूपनदेखि।
2: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज।

0: भएकोले नजाने पनि भन्नुभएको थियो।
1: हो, सावधानी अपनाउँदा सर्पको टोकाइबाट बस्न सकिन्छ, सानो लापरवाहीले ज्यान जान सक्छ।
2: सतर्कता अपनाउने गरौं, सुरक्षित बनौं।
3: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
4: डेंगू से बची की खंती मच्छर के काटे से बचा भी सर्वोत्तम उपाय हुए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के न देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए।
5: अनुरोध आगे लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
6: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज।

घर अफिस होटल का संपूर्ण इंटीरियर काम को लागि ग्लोबल इंटीरियर एंड कास्ट उद्योग समझनुहोस्। प्रोप्राइटर लील कार्की, फोन 9857073397 र 9845742914। ग्लोबल इंटीरियर एंड कास्ट उद्योग प्रणाली तिलोत्तमा छ गोरकट्टा।